दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर।
0: Yeah, let's go. The big weekender. The biggest Bollywood hits non-stop.
3: Non-stop hits.
0: Big 106.2. The beat of Bollywood.

106.2 The Beat of Bollywood. आप सुन रहे हैं बिग 106.2 The Beat of Bollywood.

0: Rewind your heart. Rewind your weekend. Let the 2000s take over. This is the Big Millennial Weekender. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: You know what? Salary day obviously अच्छा दिन होता है, लेकिन काफी hectic भी। Cash निकालो, bills और expenses के लिए पैसे अलग रखो, फिर बाकी पैसे घर भेजने के लिए exchange center के चक्कर लगाओ।
2: सब कुछ इतने मुश्किल तरीके से क्यों कर रहे हो? E&Money मनी यूज करो।
1: क्या सैलरी के लिए?
2: हाँ, अपनी सैलरी डायरेक्टली E&Money मनी में रिसीव करो और ढेर सारे बेनिफिट्स पाओ।
1: जैसे क्या?
2: जैसे इजी लोकल और इंटरनेशनल ट्रांसफर्स, बिल पेमेंट्स, फ्री कार्ड, सब कुछ एक ही ऐप से।
1: वाओ, ये तो काफी यूजफुल लग रहा है।
2: बिल्कुल, E&Money मनी के साथ आपकी सैलरी और भी ज्यादा काम करती है, इससे सैलरी डे काफी आसान हो जाता है। तो E&Money मनी के साथ फिक्र छोड़ो। Terms and conditions apply.

0: 96.2 The Beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, हमेशा इतना चिल कैसे रहता रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलरस से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलरस कहाँ है? कहाँ है अलरस?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलरस है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलरस।
0: If you've ever set a ringtone to Kya Mujhe Pyar Hai, you're in the right place. This is the Big Millennial Weekender, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Weekender. The biggest Bollywood hits non-stop.
1: Non-stop hits.
0: Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: A circuit. अपने कार के एसी की वाट लग गई। एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा? बताना।
3: टेंशन नहीं लेने का भाई। अलरास है ना?
2: अलरास बोले तो?
3: बोले तो मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर। शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं।
2: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर।
0: Big 106.2.

0: You're tuned into the Big Millennial Weekender, where 2000s Bollywood rules the weekend. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Hey, this is Shirin and this is the Big Millennial Weekender on Big 106.2. तो एक और बार शनिवार की आपकी सुबह को बहुत ही ज़्यादा मनोरंजक और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बनाने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ और मेरे साथ में जहरा भी हैं जो कि यू नो शी इज़ गोइंग टू बी हियर फॉर मी लाइक शी हैज़ बीन देयर बिफोर. इनके साथ मैंने पहले फैशन डिस्कस किया था लेकिन आज मैं कुछ और डिस्कस करने वाली हूँ. जहरा, हाउ आर यू?
2: आई एम गुड. आज ऐसा क्या डिस्कस होगा?
1: आज फैशन से रिलेटेड कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं होगा लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कुछ ऐसी चीजें जो कभी कभी ना मतलब रात को क्या होता है लोगों को जो है नींद आ जाती है. मुझे नींद नहीं
2: अच्छा,
1: आती.
2: रात को लोगों को नींद
1: नींद आ जाती है जल्दी से आ जाती है लेकिन मुझे मेरे जैसे जो प्राणी होते हैं ना उनको नींद नहीं आती है.
2: मुझे भी नहीं आती
1: तो हम ऐसी सोचते रहते हैं तो हम दोनों ठीक है सोचते रहते हैं कुछ भी अटपटा सा सोचते हैं. तो ऐसा हुआ एक रात को कल रात को शायद या परसों. तो मैं सोच रही थी कि अगर मुझे ये पावर दे दी जाए कि मैं कास्टिंग करूं कुछ ऐसी मूवीज की जो कि रीमेक्स बनाई जाएंगी फ्रॉम द मिलेनियम टाइम्स अभी के लिए अभी के एक्टर्स से लेकर
2: बट विद द
1: न्यू कास्ट. या तो उनमें मैं किसको कास्ट करूंगी. ऑलराइट, तो पहली जो मूवी मेरे यू नो पहला जो मूवी मैंने जिस मूवी के बारे में सोचा दैट वाज हम आपके हैं कौन. मुझे लगता है कि दैट वाज सच अ नाइस हिट. माधुरी दीक्षित के ग्रेस और उसके वो जो डांस मूव्स उसको मैच करने के लिए कौन हो सकता है. सलमान खान की जगह अभी उसको माचो माना जाता है उनको माचो माना जाता है लेकिन उस टाइम पे सलमान खान को जो है थोड़ा क्यूट बॉय एरा भी था उनका. राइट,
2: ही वाज चॉकलेट बॉय.
1: या तो उस टाइम पे जो है उस एनर्जी को मैच करने के लिए कौन. तो मेरे दिमाग में दो नाम आए हैं.
2: ओके, सलमान एंड माधुरी.
1: या तो माधुरी की जगह पे सानिया मल्होत्रा बिकॉज शी सच अ अमेजिंग डांसर.
2: अग्रीड.
1: या हर एक्सप्रेशन एंड दैट विल बी परफेक्ट. आई फील सो.
2: यू आर गुड विद दैट. सानिया मल्होत्रा,
1: शी
2: वुड
1: बी परफेक्ट. या एंड देन फॉर दिस चॉकलेट बॉय काइंड ऑफ जो है उसके लिए मुझे लगता है विकी कौशल. ही इज अ लिटिल थोड़ा सा है उनका रूप थोड़ा अलग है बट आई फील दैट क्यूटनेस ही कैन ब्रिंग.
2: ऑफकोर्स,
1: राइट. हाँ,
2: बट सी सलमान खान आई थिंक वॉज द टिपिकल चॉकलेट बॉय.
1: या
2: विकी कौशल इज नॉट. थोड़ा सा अनकन्वेंशनल.
1: यस, ही इज अनकन्वेंशनल लेकिन मुझे लगता है आजकल के चॉइसेस को भी ध्यान में रखते हुए
2: आजकल के टिपिकल चॉकलेट बॉय को बोलो तो आप, मैं सिद्धार्थ मल्होत्रा बोलूंगी.
1: सिद्धार्थ मल्होत्रा थोड़ा सा और ही इज चॉकलेट लेकिन वो मुझे लगता है वो जो ऐसे क्यूट क्यूट चीजें होती है ना वो पता नहीं कितना सिद्धार्थ मल्होत्रा कर पाएंगे. लेकिन विकी कौशल आई फील लाइक यू नो दैट मूवी विद सारा अली खान वेर ही वॉज लाइक रियली ब्रिंगिंग आउट द क्यूटनेस. या
2: फॉर श्योर.
1: सो आई फील आई डोंट नो दैट इज माय टेक. मुझे ऐसा लगता है अगर मेरे हाथ में वो ताकत आ जाए मैं बन जाऊं कास्टिंग डायरेक्टर.
2: ओके, वी लीव दिस टू आवर लिसनर्स. इफ यू एग्री विद शिरीन, यू थिंक विक्की कौशल एंड सानिया मल्होत्रा विल बी अ बेटर पेयर हम आपके हैं कौन में, और यू थिंक सिद्धार्थ मल्होत्रा फिट्स द मोर चॉकलेट बॉय कैटेगरी, लेट अस नो 4305 पे.
1: यस, डेफिनेटली. एंड यू कैन ऑल्सो डीएम मी ऑन माई इंस्टाग्राम hustler_shirin. सो लेट्स गो एंड लिसन टू द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ दिस डे एंड मेक इट अमेजिंग.

0: कहने को जश्ने बहारा, व्हाट अ सॉन्ग, व्हाट अ मूवी, जोधा अकबर, ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या राय, बेस्ट जोड़ी। Welcome back once again to the Big Millennial Weekender. This is me, Shirin, and we are on Big 106.2. तो मैं बात कर रही थी जोरा के साथ about the movies. मतलब पहली तो power मेरे पास है, ठीक है, मैं हूँ casting director.
1: आज के दिन के लिए बहुत powerful है Shirin.
0: Yes, मेरे पास power दी गई है, किसने दी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हूँ casting director और मैं जो है remake बना रही हूँ सारे जो millennial times के movies हैं.
1: I love this. Two ladies sitting on a weekend अपने Delulu life में.
0: Yes, exactly. पूरे दिल्ली में सुबह सुबह उठ के. ऑलराइट, तो अगली मूवी जो मैं जिसके बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ वो है हेरा फेरी. बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल मूवी. नहीं नहीं, मेरे ऑप्शंस तो सुनो ना पहले. नहीं नहीं, बिफोर यू से नो जोरा, मैं ऑप्शंस देती हूँ, देन यू टेल मी इफ इट्स ओके और नॉट. ठीक है, आई डोंट नो हाउ मच यू लाइक हिम. आई काइंड ऑफ ओके लाइक हिम, बट मुझे लगता है अक्षय कुमार का जो रोल है उसमें, इन प्लेस ऑफ हिम कार्तिक आर्यन. ओके, आई नो there are a lot of people who do not like that kind of a swap, but still, okay. Sunil Shetty ke jagah pe Shreyas Talpade, okay, and Paresh Rawal ke jagah pe Shareeb Hashmi, jo ki Family Man fame ke hain. Shareeb Hashmi, I think he can really act out comedy scenes very very
1: the
0: well.
1: The only person I see replacing Paresh Rawal is Pankaj Tripathi.
0: Yeah, but then that is very, you know, wo normal hai. मतलब कोई भी वो सोच सकता है, मैं आउट ऑफ द बॉक्स सोच रही हूँ ना.
1: द ओनली पर्सन, आई कांट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू लॉस्ट मी एट कार्तिक आर्यन, बिकॉज कार्तिक आर्यन ने इतना अक्षय कुमार की कॉपी करने की कोशिश की कि अब उनकी खुद की कोई पर्सनालिटी नहीं, वो बन चुके हैं अक्षय कुमार. आई फील, ऑल्दो आई यूज्ड टू रियली रियली लाइक हिम, आई रियली लाइक कार्तिक आर्यन, आई थिंक ही इज वेरी गुड लुकिंग,
0: दैट्स ट्रू,
1: एंड अ गुड एक्टर टू,
0: दैट्स ट्रू. और मुझे ये लगा भी था कि यू विल से दिस. द प्रॉब्लम इज कि अक्षय कुमार के रिप्लेसमेंट में आई कुडंट रियली थिंक ऑफ एनीथिंग एनीबडी एल्स.
1: डोंट थिंक दूसरी मूवी पे जाते हैं,
0: लेकिन यार
1: टच करो, हेरा फेरी इज वेरी यू नो सेक्रेड.
0: लेकिन यार मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आई एम कास्टिंग डायरेक्टर.
1: मैं तो भूल गई हम डिलुलु वर्ल्ड में बैठे हैं.
0: ऑलराइट, चलो हम अपने डिलुलु में जीते हैं, आगे के मूवीज के बारे में बातें करेंगे, बट राइट नाउ वी आर गोना गो एंड लिसन टू मेरा मन,
1: जो इनका बहुत कहने लग रहा है आजकल, ये अपने मन में जो भी आ रहा है बोल रही है. बट एंजॉय द म्यूजिक, दिस इज द बिग मिलेनियल वीकेंड.

0: Welcome back. This is me, Shirin, on the Big Millennial Weekender on Big 106.2. तू ही तो मेरा दोस्त है, युवराज मूवी. माय गॉड, सच अ फॉरगेटेबल मूवी.
1: बट ये क्या थी मूवी? मुझे तो याद भी नहीं.
0: मुझे बहुत अच्छे से याद है, बिकॉज मैं अपने तब के बॉयफ्रेंड के साथ गई थी, अभी के हस्बैंड.
1: तो मूवी देखी भी थी कि
0: नहीं? गाने अच्छे थे, पॉपकॉर्न बहुत ही अच्छा था, समोसे तो कमाल के थे.
1: क्या थी ये मूवी? कैन यू प्लीज रिमाइंड मी? आई डोंट रिमेम्बर.
0: या दे आर ब्रदर्स, दैट्स ऑल. नो, दे आर ऑल ब्रदर्स. सलमान, अनिल कपूर और आई थिंक जाहिद खान. आई थिंक सो.
1: व्हाट?
0: एंड या दे वर ब्रदर्स एंड अनिल कपूर इज अ स्पेशली एबल्ड.
1: व्हाट?
0: या एंड आई नेवर न्यू दैट अनिल कपूर कुड नॉट एक्ट इस मूवी में. मुझे पता चल गया.
1: गजब बेइज्जती कर दी. आज कोई बात नहीं, आज पावर है शिरिन के पास.
0: वो कास्टिंग डायरेक्टर. यस, तो इस मूवी को तो मैं वापस बनाना ही नहीं चाहूंगी. इनफैक्ट फर्स्ट टाइम ही क्यों बनी मुझे समझ में नहीं आता. बट यस, लेट अस गो अहेड एंड एक और मूवी को हम जरा बर्बाद करने की कोशिश करते हैं. एंड दैट इज दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. इसके बाद मुझे नहीं पता कि जोहरा.
1: I will throw you out of the studio also, Shirin.
0: जोहरा आज मुझे शायद तलवार से मेरा गला काट दे, बट मैंने चाकू छुरी सब छुपा के रखा है. तो let me tell you, मैंने कास्टिंग किसकी की है.
1: Actually, okay. I was happy with you replacing Madhuri, so maybe I might be okay with you doing this.
0: Okay, okay. Let's go for it. Okay. DDLJ में शाहरुख की जगह पे रणवीर सिंह. ओके, रुको. अरे, एंड काजोल की जगह पे आलिया भट्ट. जोड़ी के हिसाब से देखो, शाहरुख काजोल की जोड़ी, रणवीर आलिया की जोड़ी एक्सपेरिमेंटेड है ऑलरेडी और चली भी है. ठीक है, थोड़ा सा सोच के देखो.
1: बट जोड़ी के हिसाब से थोड़ा ना देखना है हमें.
0: जोड़ी के हिसाब से भी और साथ में वो बोलेगा
1: के हिसाब.
0: सोचो, रणवीर बोलेगा पलट पलट पलट और आलिया पलटेगी.
1: वो पूरे ड्रामा के साथ बोलेगा, नॉट द रोमांटिक.
0: नहीं, हियर यू आर नॉट रियली अंडरस्टैंडिंग हाउ you know how he can shape himself according to
1: of
0: the
1: course
0: character.
1: Of course he can,
0: right?
1: Shape, yeah. But see, I can imagine him doing all sorts of roles. But there are some actors jinko romance ekdam naturally aata hai. And Ranveer Singh is not someone jinki aap aankhon mein dekhkar romance matlab dikh jaye. Shah Rukh Khan can do the romance without any words. You look at
0: lekin
1: him,
0: one more thing.
1: Eyes have love.
0: Okay, maybe. But you also know that DDLJ ke liye pehle Saif Ali Khan ko cast kiya gaya tha instead of Shah Rukh Khan.
1: Yeah,
0: so imagine, nobody could think of Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan ko dekhte hi sab dar jate the, bazigar mein ladki ko upar se niche phenk diya. Phir bhi usko kiya na, aur he proved na, to mujhe lagta hai ki meri casting bhi sahi ho jayegi. Okay, you tell me, what do you think? Iski jagah pe kaun?
1: यहाँ तो नाम ही चेंज कर देना चाहिए. दिल वाले दुल्हनिया ले जाइए, दुल्हनिया खुद ही इसको देख के भाग जाएगी. नहीं चाहिए.
0: All right, मुझे लगता है कि मैंने जो है बहुत ज्यादा ही जोहरा का ब्रेन फ्राई कर
1: दिया
0: है
1: मुझे.
0: इसीलिए हम थोड़ा सा काम सा गाना भी सुनेंगे जाके, विच इज फ्रॉम द मूवी गुजारिश, तेरा जिक्र. आई होप यू लव दिस.

0: You're tuned into the Big Millennial Weekender, where 2000s Bollywood rules the weekend. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: The Big Millennial Weekender playing. This is me, Shirin, on Big 106.2. और अब जो है मैं बात करने वाली हूँ एक और मूवी के बारे में. I don't know if you've watched the movie दुश्मन, ज़ोरा.
2: दुश्मन. रिमाइंड मी, कौन था?
1: काजोल का डबल एक्टिंग एंड आशुतोष राणा केम फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ विलन इन दिस मूवी एंड संजय दत्त इज आल्सो देयर इन द लेटर पार्ट ऑफ द मूवी.
2: ये लड़की पता नहीं ढूंढ ढूंढ के ऐसे मूवीज निकाल रही है.
1: ओके, आई विल सिंग द सॉन्ग, मे बी यू रिमेम्बर. आवाज दो हमको, हम खो गए.
2: ये ऑफकोर्स गाना याद है.
1: हाँ, यही वाला गाना. ठीक है, अभी ये थोड़ा सा डार्क है ये मूवी. इट्स नॉट लाइक वेरी लाइट हार्टेड मूवी. ठीक है, तो इसमें हमें थोड़े इंटेंस कैरेक्टर्स चाहिए.
2: ओके, सो यू आर टेलिंग मी रिप्लेसमेंट फॉर काजोल एंड
1: काजोल संजय दत्त एंड आशुतोष राणा, हु इज द विलन. विलन मतलब
2: इट्स इजी बिकॉज आई डोंट केयर अबाउट दिस मूवी.
1: फिर आज जाके देखना, देन यू विल नो. ओके, योर सैटरडे होमवर्क इज दिस. ठीक है,
2: शी इज कन्विंस्ड टू चेंज माय माइंड. ओके, लेट्स गो.
1: ओके, काजोल की जगह पे श्रद्धा कपूर.
2: ओके,
1: या शी इज अ गुड एक्ट्रेस. ओके, संजय दत्त की जगह पे आयुष्मान खुराना. व्हाई? बिकॉज संजय दत्त इन दिस मूवी इज ब्लाइंड एंड आयुष्मान खुराना को हम पहले ही देख चुके हैं ब्लाइंड रोल करते हुए एंड ही इज रियली गुड एट इट.
2: ये मस्त लॉजिक है.
1: ओके, ठीक है. और मुझे कोई नया लेना था यार, इसलिए. ठीक है, एंड उसकी डेट्स भी अवेलेबल थे, ऐसा मैं सोच रही हूँ मेरी डिलुलु दुनिया में. और आशुतोष राणा की जगह पे आकाश मखीजा. Now, who is Akash Makhija, who is hitting all the headlines because of Raak?
2: I think, yeah, I can imagine him in place of Ashutosh Rana. Because even Ashutosh Rana, even though, yes, both of them villains, of course, yeah. That is the commonality. But dono ki aankhe, if you notice.
1: Yes.
2: That is the similarity between them. Both they of just them have to look at you. Scary eyes.
1: Yeah, they just have to look at you and you're like, oh my God, who is this, you know?
2: They're beautiful,
1: so,
2: scary.
1: Yes, yes, exactly.
2: Colored eyes, beautiful, but exactly. So scary because they've portrayed that character.
1: Yeah.
2: Okay, I think I will agree with you on this casting.
1: Just because
2: maine dekhi nahi hai movie, mere ko padi nahi hai.
1: No, but Zohra, if you've not watched this movie, this is a big miss. Ab tum movie dekh kar,
2: thriller movie?
1: Yeah, it's thriller. Okay. Theek hai? Dekh kar fir mujhe batana ki meri casting sahi hui ki nahi.
2: Okay, casting queen.
1: All right, and if you're, I mean, obviously, if you're listening, you have to tell me whether you like my casting plans or not. Just let me know on my Instagram, hustler_Shirin. Let's go ahead and listen to our next song. Keep smiling and have

0: आइकॉनिक मूवी, दी मोस्ट आइकॉनिक जोड़ी और नॉट, आई डोंट नो.
1: ये अब इस मूवी का भी रीकास्ट करके करने वाली है. आइकॉनिक आइकॉनिक बोल के सारे आइकॉनिक जोड़ियों को तहस नहस कर दो सारी नई कास्टिंग करके.
0: नहीं, इस पे मेरे को थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो मैंने इसको साइड में रखा है.
1: टू मच हैसल फॉर हसल.
0: तो मैंने अगला निकाला है, और ये मूवी तो पक्का जोहरा ने देखी होगी.
1: ओके,
0: ठीक है, बोलू मारोगी तो नहीं. दिल चाहता है. मुझे लगता है मुझे लाइव दिख रहा है जोहरा के फेस पे, एक्सप्रेशन ही नहीं है, कोई एक्सप्रेशन नहीं है. ठीक है,
1: नम, आई डोंट फील फीलिंग्स एनीमोर.
0: या मुझे लग रहा है सुबह सुबह सैटरडे को उठा के सबका रेज बेट कराने में मैं
1: मेरे पे तो चाय भी असर नहीं कर रही है.
0: ऑलराइट, अब मेरी कास्टिंग सुनो. ठीक है, दिल चाहता है तो सबने देखी होगी. ठीक है, तो कास्टिंग में आमिर खान की जगह पे रणबीर कपूर. ठीक है,
1: ओके,
0: या ओके, थोड़ा नॉटी एंड थोड़ा लविंग, बाद में लव रियलाइज होता है, दैट काइंड ऑफ थिंग. देन सैफ अली खान की जगह पे शाहिद कपूर, बिकॉज आई फील शाहिद कपूर हैज गॉट एन अमेजिंग कॉमिक टाइमिंग.
1: ओके,
0: ठीक है, एंड अक्षय खन्ना की जगह पे अली फजल, दैट ब्रूडी काइंड ऑफ लुक एंड यू नो दैट डीप एंड यू नो बहुत ही रोमांटिक सा. या
1: एंड
0: अक्षय खन्ना की जगह पे अली फजल.
1: और कौन सैफ की जगह? कौन
0: सैफ की जगह? शाहिद कपूर.
1: सो अली फजल, शाहिद कपूर एंड रणबीर कपूर.
0: यस, इट विल बी अमेजिंग. थिंक ऑफ इट. सी, जोहरा के चेहरे पे मुझे थोड़ा सा शी इज ट्राइंग टू इमेजिन, बट इतना मेरे को समझ में आ रहा है, एटलीस्ट शी इज ट्राइंग टू इमेजिन. एकदम से मेरे को नो तो नहीं बोला है. ठीक है, ओके.
1: मुझे ये फीलिंग आ रही है बिरयानी में जब आप किशमिश काजू डाल देते हो. ये फीलिंग कर रही है अभी.
0: अब प्रीति सिंटा की जगह पे मैं वापस सानिया मल्होत्रा को डालूंगी, बिकॉज आई रियली लव हर. ठीक है, एंड शी इज वेरी क्यूट. ठीक है, एंड सोनाली कुलकर्णी की, सोनाली कुलकर्णी की जगह पे मैंने किसी को नहीं डाला, बिकॉज मुझे लगा कि वो कोई भी कर सकता है.
1: ये अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कास्टिंग डायरेक्टर ने कैरेक्टर निकाल दिया. हाँ. मेरे को कोई सूझ नहीं रहा, ये रोल ही नहीं होगा.
0: हाँ, नहीं मतलब वो मैं देख लूंगी, वो बिकॉज दैट इज लाइक मैं देख लूंगी, इसको ऑडिशन रख दूंगी,
1: जो भी पहली आएगी ऑडिशन,
0: उसको ले लूंगी. या सो कैसे लगी मेरी कास्टिंग? दिल चाहता
1: दिस वाज डीसेंट.
0: है ना, अच्छा है
1: ना.
0: हेलो, डीसेंट के लिए 6/10.
1: हाँ, गुड के लिए 8/10. ये 6-7 के बीच में आता है.
0: बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर है जोहरा.
1: नहीं, मैं कन्विंस ही नहीं होती. ओजी क्लासिक्स को आज कर रहे हो और इधर से उधर कर रहे हो. बहुत ही लाइक पहले वाले को मैंने दिया गुड.
0: हाँ, इसलिए मैंने उससे शुरू किया.
1: स्मार्ट है
0: ऑलराइट. ओके, सो आई थिंक इसके बाद जो है दूसरी मूवी की बर्बादी के लिए हम आएंगे वापस, लेकिन उससे पहले लेट्स गो एंड लिसन टू दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग. आई होप यू हैव वॉच्ड दिस मूवी. काजोल एंड अनिल कपूर, बहुत ही अजीब सी जोड़ी, लेकिन गाना बहुत ही अमेजिंग गाना, छुप गया बदली में जाके, इन द वॉइस ऑफ उदित नारायण एंड अलका याग्निक.

0: बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो अलराज।
0: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये गाना भले ही मैंने बहुत ही कम सुना है लेकिन सोनू निगम की आवाज में मैं कुछ भी सुन सकती हूँ।
1: ये मूवी भी नहीं देखी होगी।
0: कौन गाना
1: मैन, दिस वॉज द मूवी जिसमें दिस क्या नाम है इनका, ये
0: फरदीन खान,
1: मित्रा मित्रा, कोई ना मित्रा, कोई ना मित्रा लुक्ड सो हॉट,
0: द फ्यू बिफोर शी बिकेम समथिंग एल्स,
1: हैव यू हर्ड द सॉन्ग सारा जहां कहे इश्क
0: है जो था, राइट,
1: इस मूवी का गाना,
0: लेकिन ये मैं रीमेक नहीं बना रही। ऑल राइट, तो आखिरी मूवी जो कि मैं बर्बाद करने वाली हूँ वो है अंदाज अपना, अपना।
1: जाते जाते सबसे अच्छी मूवी खराब करके जाना चाहती है ये एक नई कास्टिंग डायरेक्टर डिलुलु कास्टिंग
0: डायरेक्टर। यस यस, और इसके बाद देखना मेरे पास ये जॉब आएगी कास्टिंग डायरेक्टर की और मुझे बॉलीवुड बुला रहा होगा। जोहरा, तुमको अगर चाहिए ना मूवी में रोल तो मेरे से अच्छे से बना के रखो, ठीक है?
1: फेमस फेमस होने के बाद मुझे याद रखना, ठीक है शिरीन?
0: यस, डेफिनेटली याद रखूंगी। ऑल राइट, चलो अब अंदाज अपना अपना में, ठीक है, हमको पता है कि उसमें इट्स नॉट जस्ट द लीड कैरेक्टर्स, इट्स एवरीबॉडी इन द मूवी, ईच एंड एवरी स्मॉल कैरेक्टर ऑल्सो परफॉर्म्ड सो वेल, ठीक है? तो मैंने कुछ हद तक कास्टिंग करके रखी है, बाकी मैं ऑडिशन डालूंगी, ठीक है? तो आमिर खान के जगह पे आई हैव पुट कुणाल खेमू।
1: लव इट, लव इट।
0: अच्छा है ना यार, कुणाल खेमू इज गुड ना?
1: कुणाल खेमू इज अ 10 on 10 फॉर मी।
0: ओह वाह, ओके, आई थॉट शी वाज बीइंग सरकास्टिक।
1: नो, आई लव इट।
0: नेक्स्ट इज सलमान खान के जगह पे विक्रांत मासी, because I feel Vikrant Masi has got a good comic you know, a humor sense.
1: Agreed,
0: hai na? And I think it will be a very different
1: can
0: kind
1: I
0: of a role.
1: Can I tell you ki Vikrant Masi ki jagah mere paas ek suggestion hai?
0: Haan, I can take his audition. Bol do kaun hai?
1: Pratik Gandhi.
0: Haan, yeah, Pratik Gandhi.
1: Have you seen Madgaon Express?
0: Haan, yeah, yeah, yeah, of
1: now,
0: course.
1: Now you tell me Kunal Khemu and Pratik Gandhi together,
0: but haan, theek hai, like, yeah, they will gel really well.
1: Ye audition karna Vikrant Masi and Pratik Gandhi ka,
0: but
1: to better karega.
0: But pata hai kya hai, baat ye hai ki main Vikrant मासी को चांस देना चाहती हूँ, क्योंकि उनको जो है कॉमेडी रोल में देखना मजा आएगा, राइट? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन, ठीक है? रवीना टंडन की जगह पे तापसी पन्नू,
1: ओके,
0: ठीक है, शी डजंट केयर, आई नो। करिश्मा कपूर की जगह पे परफेक्ट अनन्या पांडे, क्योंकि इन दैट मूवी करिश्मा कपूर इज लाइक दैट
1: अनोइंग,
0: हाँ, तो करके जो आवाज में बात करती है, दैट विल बी अनन्या पांडे, ठीक है? अब आगे चलते हैं, जो शक्ति कपूर का आइकॉनिक क्राइम मास्टर गोगो वाला रोल है उसमें राजपाल यादव, ओके,
1: ओके,
0: ठीक है, क्राइम मास्टर गोगो, आंखों से क्या गोटी खेलूंगा एंड ऑल दैट, ओके। परेश रावल जो कि डबल एक्टिंग है, एक जो है बिलियनर और एक है तेजा, उनकी जगह पे बमन ईरानी,
1: ओके,
0: ठीक है, आई फील ही विल बी लाइक अ गुड फादर टाइप का रोल भी करेंगे, थोड़ा विलन टाइप का भी अच्छे से कर लेंगे। बाकी जो रॉबर्ट और भल्ला है उनके लिए मैं ऑडिशन डाल दूंगी।
1: स्टार्टिंग में मेरे को बड़ा अच्छा लगा कास्टिंग, फिर ऐसे थोड़ा लूज होते होते होते वो थोड़ा,
0: कम ऑन, डोंट टेल मी कि इसमें भी तुमको पंकज त्रिपाठी चाहिए,
1: नहीं नहीं, बट
0: बमन ईरानी इज गुड ना,
1: इट्स आउट ऑफ 10, इट्स प्रीटी गुड,
0: फिर भी ठीक है, चलो कम से कम कुछ तो दिया मुझे।
1: अब पता नहीं अगले हफ्ते ये क्या ऊटपटांग कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आएंगी, आज कास्टिंग डायरेक्टर, नेक्स्ट मुझे ऐसे लग रहा है नेक्स्ट वीक शी विल बिकम सम म्यूजिक डायरेक्टर, एंड जो आइकॉनिक गाने हैं ना, शी विल टेल मी कि ये दूसरे सिंगर ने गाया होता था, एंड शी विल रिप्लेस देम विद न्यू सिंगर।
0: थैंक यू फॉर द कॉन्सेप्ट, अगले हफ्ते मैं यही करके आऊंगी। ऑलराइट, सो ऑन दैट नोट वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द शो, एंड आई होप आपको जो है गाने बहुत अच्छे लगे जो हमने प्ले किए, मेरे आइडियाज बहुत अच्छे लगे। यू कैन टेल मी अबाउट इट एंड यू कैन मैसेज मी, यू कैन डीएम मी ऑन माय इंस्टाग्राम आईडी hustler_shirin। दिस इज मी शिरिन ऑन द बिग मिलेनियल वीकेंडर ऑन बिग 106.2। लेट्स कैच अप नेक्स्ट सैटरडे, अंटिल देन कीप स्माइलिंग।

0: The beat of Bollywood.
1: This summer, upgrade your drive with Jetor. Take advantage of unbeatable summer offers, such as buy now, pay next year, zero VAT or zero interest. And that's not all. Enjoy savings of up to 7,000 dirhams on select models, with EMI starting from just 966 dirhams per month. Plus, every drive comes with peace of mind, thanks to a warranty of up to 1 million kilometers. Visit Jetor showrooms across Abu Dhabi, Dubai, Ajman and Al Ain today. Jetor UAE, part of Elite Group Holding. TNCs apply.
2: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
3: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
2: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
3: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अल एन में।
2: चलो चले अलराज।
0: Millennials unite! Your filmy flashback has officially begun. This is the Big Millennial Weekender, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: You know what? Salary day obviously अच्छा दिन होता है, लेकिन काफी hectic भी। Cash निकालो, bills और expenses के लिए पैसे अलग रखो, फिर बाकी पैसे घर भेजने के लिए exchange center के चक्कर लगाओ।
2: सब कुछ इतने मुश्किल तरीके से क्यों कर रहे हो? E&Money Money use करो।
1: क्या? सैलरी के लिए?
2: हाँ, अपनी सैलरी डायरेक्टली E&Money Money में रिसीव करो और ढेर सारे बेनिफिट्स पाओ।
1: जैसे क्या?
2: जैसे इजी लोकल और इंटरनेशनल ट्रांसफर्स, बिल पेमेंट्स, फ्री कार्ड, सब कुछ एक ही ऐप से।
1: वाओ, ये तो काफी यूजफुल लग रहा है।
2: बिल्कुल, E&Money Money के साथ आपकी सैलरी और भी ज्यादा काम करती है, इससे सैलरी डे काफी आसान हो जाता है। तो E&Money Money के साथ फिक्र छोड़ो। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। Big.

0: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
1: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
0: अलरास बोले तो
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
0: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
2: Millennials unite! Your filmy flashback has officially begun. This is the Big Millennial Weekender, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, जो कि ये दिल के हजारों टुकड़े और छोड़ा मुझे बेसहारा।

0: Thank you. Thank you. I would like to introduce my friend and a great musician, Ashwin, over here. Ashwin खुद बहुत अच्छे कंपोजर हैं. इन्होंने एक मराठी फिल्म का म्यूज़िक किया है, मैंने सुना है, और डॉक्टर एन राजम के शागिर्द हैं. और अगेन दोबारा मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुम मेरे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने अश्विन. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. थैंक यू.
1: बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड.